कबीर सुनो रे संतो, जो आप संगत च बैठते हैं सतगुरु बड़ा सत्कार करते हैं, तुहानू संत कहिंदे, आवो संत प्यारियो अकथ की करें कहानी। अकथ वाहिगुरु जी ने कहा या कहानी कर रहे हो, भगत भी किया, बहुत सत्कार किया, साधु भी किया, ता ही साध संगत कहिंदे हैं, माघ मजन संग साधु धूड़ी कर इशनान, मन का इशनान करा रहे थे। धूड़ी की है जी, सारे साधु बोलते वाह गुरु, एक कन्ना राही साड़ी सुरती लगती, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाता। ता ही क्या ना, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। सत संगत किनू कहिंदे, जिथे सच की उस्तत हो रही वडियाई, सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम मुखाणी। मुखाणी दा चेंट करना, बोलना, एको नाम हुक्म है, गुरबाणी च हुक्म है सानू। कबीर साहब भी अज यही हुक्म कर रहे हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा। तो तुम एक नाल जोड़ रहे हो मन, वाह गुरु, जितने जोड़ गया शरण से चल गए, टूटी गंढी जानी है। बड़ा सौखा काम है जे सिख के करिए, प्रीत पा लीए, प्रीत प्रीत साड़ी पई है माया नाल, ते माया उन्हें दसिया भी है कबीर साहब ने, ते साड़े शरीर तो शुरू होंदी है, फिर साड़े माता पिता, फिर साढ़े भैन भरा, फिर साढ़े रिश्तेदार, फिर साढ़े बच्चे परिवार, फिर साडा कारोबार संसार, ये सारी माया। तो ये फुरने चलते रहते मन च, मन इतने जुड़िया हो, मन माया में रम रहा, इतने प्रीत पाई बैठा। तो हुण सतगुरु सानू कह रहे हैं भी तुसी साची प्रीत हम रे मन राम स्यों कर प्रीत, राम दे नाल हुण तुसी जोड़ रहे हो मन, वाह गुरु। अखां बंद कर, मन अखां च है, अखां बंद कर लैंदे कन्ना जा जांदा, फिर सुन के जुड़ जांदा। तां ही उन्हां कहा गा भी ए सुणीए मन रखीए पाओ प्यार पै जूगा सच, रे मन राम स्यों कर प्रीत। तो वेखो तरीका दस्या नवें पातशाह ने, कहिंदे सरवणी गोबिंद गुण सुनो, अजे गुण गाउंदे वाह गुरु। ये गाउण नाल मन निर्मल हो जाता, गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हौमे बिख फैल, होहे अचिंत बसे सुख नाल। पर स्वास ग्रास जपना, तुम स्वास ग्रास हर नाम समा, किते सरवणी गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। आज बोल दियो वाह गुरु, ये गोबिंद के गीत है, इन्हें तुहाडी प्रीत पा देनी है। तो फिर की कहन लगे कि संगत जाके करया करो, कर साध संगत सिमर माधो। सिमरन कित्थे जाके करना, संगत ज्यादा फायदा होंदा। वैसे तो कल्ले कल्ले भी करया करो घर च भी, वो तो कहिंदे कोई समा ही नहीं गा जिहड़ा तुसीं खाली रखना। सौंदियां भी वाहो वाहो उचरे, उठदियां भी वाहो करें। गुरु रामदास जी ने बड़ी सोहनी जुगती दसी, गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम ते, उद्दम करे भलके परमात, इशनान करे अमृतसर, उपदेश गुरु हर हर जप जापे। पंजां प्यारियां तो मिलता है उपदेश गुरप्रसाद वाहिगुरु, हर भी लिखिया कहते जे जपना शुरू करता ना, सब किल विख पाप दुख लै जावे, मन क्लीन अप हो जाए। फिर दिन की गल की, सवेरे जो उठते हैं फिर कहते नितनेम करो, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। तो उन्हें पूछा जी फिर सारा दिन की करिए, काम भी करना, कहते फिर बहद उठद हरनाम ध्यान सौखा बन, वाह गुरु वाह। ध्यान ध्याना हों, ध्यान नाल बोल के सुन, जो श्वास ग्रास त्याए मेरा हरा, श्वास ग्रास अंदर सह जाते वाह बाहर गुरु, क्योंकि सह बड़ी जरूरी है बॉडी, तो सहवे रला दोगे तो सौखे रहोगे सारा दिन।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾ, ਕਿਤੇ ਭਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ, ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਵੇਂ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੇ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਕਲ ਪਰਜਾ ਜਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताय। सब थाई होए सहाय।

प्यारे खालसा जी नू बख्शो, निमाणिया दे माम, निताणिया दे ताम, नियोटिया दी ओड़, ने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, आप जिया दे हजूर सो दर रहरा साहब दे पाठ दी अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे दासरिया दे हिरदे ते वसाउणा, सब दियां दर हाजरियां तिर फुल भेटावां प्रवान करनिया, दरों करो नाम दान, चढ़दी कला दी दात बख्शनी, परिवारां विच सुख शांति, कारोबारां विच वाधे करने अरदास बेनती है जी। संगतां वलों हरमन कौर वालों, सच्चे पातशाह जी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करनी है, सच्चे पातशाह कृपा करनी, सफलता वांग संग सहायता करनी, गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया, इस वेले बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है, करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय। आप जी का सीत प्रसाद जो छके, नाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपे, श्रीमुख वाग दी बख्श करो, सही प्यारे मेल जिना मिले आम दा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल के, सब सिखण को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिल बोच है, खोजिश

लगोर आहन सहज दर्शन परसय जन्म मरण दुख जाए। जमण ते मरण दा दुख चला जांदा है। ता कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जो हमरा चाहे दर्शन हेरा सो सरदा तर हेरन करै गन पापन को तत छिन हर। अगला बोल क्या जी तुहाडे नाल बचन बलास करदे सी ता गरीब नवाज कहन लगे मोह को बात करन की चाह। जड़ा चाहुंदा है मैं दसें पातशाहियां नाल गल्लां बातां करां। मौको बात करन की चाह पढ़े सुने गुरु ग्रंथ उमा है। वाह भई वाह। साहब जी कहन लगे उमा है। उमाहे तो भाव उत्साह दे नाल प्रेम दे नाल सतगुरां दी बाणी पढ़ लवे ते प्रेम दे नाल बाणी नूं सुन लवे गुरु नाल गल्लां हो जाणियां ने। मौको मेरे नाल बात गल बात करन की चाह इच्छा रखदा जिहड़ा सिख। मैं कलगीधर पातशाह जी नाल गुरु नानक महाराज नाल बचन बलास करा मौको बात करन की चाह है पढ़ सुने गुरु ग्रंथ माए। जदों सुन रहे हो तो समझो गुरु दे बोल ने बाणी की भी है। हों आपो बोल ना जानदा मैं सहया कहया सब हुक्म आओ जियो। जैसी में आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये गुरु की रब्बी बाणी है। जा कथा करन वाले दे जा कीर्तनिया दे बोल नहीं हुंदे ओ ते केवल गुरु की बाणी पढ़ के सरवण करवा रहे ने। बोल गुरु के जुगो हो जोगा टालने। पातशाह जी कहिंदे पढ़े सुने गुरु ग्रंथ माहे। उमाहे तो भाव उत्साह दे नाल ताई

भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आयो जी रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण उन्हें दयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलना जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जी दे पावन स्वरूप दे सुख आसन दी सेवा हुई है सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल जुग दी खिमा बख्शन आप जी दे पाणे विच सच्चे पातशाह दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया ही रहण आप दे पाणे विच बतीत होवे कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जाग ने दर्शन बख्श के निहाल करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे पव सागर नहीं तारियो रे। कर्म धर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जारियो रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे। हीरा लाल मोल जन्म है कौडी बदले हारियो रे। रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी हृदय नाही बिचारियो रे। उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न सतारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे। कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारियो रे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे। कहे कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे। चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे। मन बौरा रे अंकस सहयो शीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरा रे। निरपै होए न हर भजे मन बौरा रे। गहयो न राम जहाज रहाओ मरकट मुस्ती

ज्यो नलनी सुअटा गयो मन बौरा रे माया एहो ब्योहार जैसा रंग कसुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो पासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही न जावे हमरा धन माधव गोविंद धरणी तार एह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत पहे उदासी मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन थावत परम बंधन पहो पागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम घर लाख कोट असभास्ती हम घर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुस्त चनन की लुभदना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर गरहे परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसुम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन मह फिर फिर काल हयो या धन जोबन अर सुतदारा पेखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तान तिन को मंदर कहो चहो दिस ठाट ठयो कहे कबीर पह सागर तरन कौ मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन धन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पमन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कहे कभी

जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भए है एक कै देखत मन पतिया ही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई, कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्तन उप बीच पाई, कुंजी कुफल प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसैक हर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा चेत, सो चेत चित होए रहो, तौ लै प्रगास उजारा। नौ खर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप न पाई, कहत कबीर नवै खर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर न जान्यो अनाना, शिव संकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणाना। रहाओ हिरदे प्रगास ज्ञान गुर गमित, गगन मंडल मह ध्याना, बिखै रोग पै बंधन भागे, मन निज खर सुख जाना ना, एक सुमत रत जान मान प्रभु, दूसर मन है ना आना ना। चंदन बास भये मन बासन, त्याग कटियो अभिमाना ना, जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाकै, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत सेव सहज प्रगास्यो, एक समाना ना, कहे कबीर गुर भेट महा सुख, भ्रमत

सरोवर पाव हो सुख। अष्टमी अष्ट धात की काया ताम है कुल महानिद राया गोर गम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अभंग अशेद। नौमी नवै द्वार को साध बहती मनसा राखो बांध लोभ मोह सब बिसर जाहो। जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। दसवीं दह दिस होए आनंद छूटै भरम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तत अनूप। अमल ना मल ना शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस थावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर पतावत पाया नीरा। बारस बार है उगवै सूर अहनस बाजे अनहद तूर। देखिया त्यू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेर है अगम बखाण अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसे मुरार। सत संतोख का तरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकास परसह कला सहज प्रगास। आदि अंत मद होए रहया थीर सुख सागर मह रमे कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत। बार बार हर के गुण गावो गुण गम बार बार हर के गुण गावो। गुर गम भेद सुहर का पावो रहाओ। आदित्य करै भगत आरंभ काया मंदिर मनसा थंभ। अहनिस अखंड सुर ही जाए तो अनहद बेण सहज मह बाए। सोमवार सस अमृत झरै चाखत बेग सगल बिखहरै। बाणी रोक्या रह द्वार तो मन मतवारो पीवन हार। मंगल मार वारे ले माहीत पंच चोर की जाने रीत। घर छोडे बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए। बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल मह हर का बास। गुरमिल दो एक सम तरै उर्द पंकलै सुदा करै। बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाए। तीन नदी तह त्रिकुटी माहे अहनिस कसमल तो वह नाहे। सोकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी घट मह जोए। बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लाग

नजर करे जो किस करना सो कर रहा अवर न करना जाई जैसा वरता तै सो कही है सब तेरी वड्याई कल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला पीवत रह आपे रूप करे बहु भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ हुए नंद सदा मन चाओ यहा भगत एहो तपताओ इत रंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने सालाह होर नचना खुशिया मन माह रहाओ सत संतोख वजह दोए ताल प्यारी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं दूजा पाओ इत रंग नाचो रख रख पाओ पो फेरी होवे मन चीत बहदया उठदया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो इत रंग नाचो रख रख पाओ सिख सभा दिख्या का पाओ गुरमुख सुनना साचा नाओ नानक आखण वेरा वेर इत रंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौन उपाय धरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंधलै दै सिर मूड कटाया रावण मार क्या वड्डा भया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्बे पूर रहा लिवलाए रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी काली नथ क्या वड्डा भया किस तू पुरख जोरू कौन कही है सर्ब निरंतर रव रहा नाल कुटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपे क्यों छपया एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख नाह दवाजै शब्द निरंजन किया करे वखियान जाने जे कोई अमृत पीवै सोई रहाओ जिन पिया से मस्त भये है टूटे बंधन फाहे ज्योति जोत समाणी पीतर ता छोडे मा

अब ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनु कहिया दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिया कथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद अठ सठ मज्जन हार रस रेद गुरमुख निर्मल मैल न लागै नानक हिरदय नाम वड्डे धुर भागै आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुर अपनी आत्म राम निहारिया करत बिचार हृदय हर रव्या हृदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभै मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटै विच होमै भरम न जाई सतगुर मिलै ता होमै टूटै ताको लिखै पाई हर हर नाम अम भगत प्रे प्रीतम सुख सागर उरत हारे भगत वच्छल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूज मरै प्रभ पाए मनसा मनहि समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज भाए लिवलाए आसा महला पहला किस कहो कहे सुना वह किस कहो किस समझा वह समझ रहे किसै पढ़ा वहे पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत सरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनंत तरंग भगत हर रंगा अनदन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपरंपर हीरा लाल रत्ता मेरा मन धीरा कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है सब जग देखिया माया छाया नानक गुरमत नाम त्याया आसा महला पहला ते तुका कोई भिखक भिख्या खाए कोई राजा रहा समाए किस ही मान किसै अपमान ढाहे उसारे धरे ध्यान तुझते वड्डा नाही कोई किस वे खाली चंगा।

नदर करे ता सतगुर मिलै प्राणत नानक भव दिल तरै। आसा महला पहला पंच पदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्त।

की विसरै दुख बहुता लागै दुख लागै तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी भवन ना वाजै चरणी चलै पजूता आगै बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाव करे ही सबना फल लागै नाम एको बिन करमा कैसे ले ही जेते जी तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसे नाही दुख सुख भाणा तेरा होवै बिन नावै जीओ रह नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जुगत नाही कह नानक जीवाले जिया जह पहवै तह राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तुहती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती हर नामा जस जाचो नाओ गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रहाओ बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल तोती टिक्का नाम समाल एथै उथै निभी नाल बिन नावै होर कर्म ना पाल पूजा प्रेम का माया पर जाल एको वेखो अवर न पाल चीनै तत गगन दस द्वार हर मुख पाठ पढ़ै विचार भोजन पाओ भरम पाओ भागै पहरू राशब चोर ना लागै तिलक ललाट जानै प्रभ एक बूजै ब्रह्म अंतर विवेक आचारी नहीं जीत्या जाए पाठ पढ़ै नहीं कीमत पाए अष्ट दसी चहो भेद न पाया नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर सिरजी जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई साच नाम गुर शब्द विचार गुरमुख साचे साचै दरबार रहाउ सचार्ज सची अरदास महली खसम सुने साबास सचै तख्त बुलावै सोए दे वड्याई करे सोए तेरा तान तू है दीवान गुर का शब्द सच निशान मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए सच निशान ठाक न पाए पंडित पढ़े वखाणे वेद अंतर वस्त न जाने भेद गुर बिन सोजी बूझ न होए साचा रव रहया प्रभ सोए क्या हो आखा आख वखाणी तू आपे जाने सर्ब विडाणी नानक एको दर दी बाण गुरमुख साच तहा गुदराण आसा महला पहला काची गागर दे दुहेली उपजै बिन सह दुख पाई इहो जग सागर दुत्र क्यों तरिया बिन हर गुर पार ना पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे तुझ बिन अवर ना कोई हरे सरबी रंगी रूपी तू है तिस बख से जिस नजर करे

चरण सरेव हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया तुम सा मीत नावर कोई, ज्यो तू राख्या ते वही रहना दुख सुख देवह करे सोई। आसा मनसा दो बिनासत त्रह गुण आस निरास पही, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हिरदय अलख पहिवा, नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे मोह कुटंब मोह सब कार, मोह तुम तजहो सगल बेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निद पाई और वै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दी ख्याले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नजर करे ता एहो मोह जाए नानक हर सूर है समाए। आसा महला पहला आप करे सच लाखे अपार, हो पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किश होवै, मन हटकीचै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेबहो जो उपजै सो लख पेबहो। ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौदी टोटाया वै नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता प्रयोपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै तो जम कहा करे मोह स्यो आगै रहाओ। आस निरासी तो सन्यासी जां जात जोगी ता काया भोगी, दया दिगंबर देह बिचारी आप मरै अवरा नह मारी, एक तू होर वेस बहु तेरे नानक जाना चोजना तेरे। आसा महला पहला एक न भरिया गुण करत होवा, मेरा सहो जागै हो निस्पर्श होवा, यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागै हो निस्पर्श होवा रहाओ, आस प्यासी से जय आवा, आगै सह पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ। प्रेम ना चाखिया मेरी तिस ना बुझानी, गया सो जोबन तन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी पहले उदासी रहो निरासी रहाओ। हमें खोए करे सिगार तो कामन से जय रवै पथार, तो नानक कंत मन भावै छोड़ उड़ाई अपने खसम समावै रहाओ। आसा महला पहला पेवकड़ै थन खरी इयानी,

पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या से ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सदमन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर द्रव को हिर है।

प्रसाद संपूर्ण फल है। देह प्रसाद परम गत पावे, देह प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाघ हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो।

साध की शोभा ब्रह्म समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रहन साध के संग मनोहर बैन।

सुख पावे साध संग बहत अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक संग बसे थान ऊचे साधु कै संग महर पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार।

साधु कह संग पाव पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्ब थान गम नानक, साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुहित हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरुत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नान कुदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निहतरे, साध के संग लगे

कला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगाह जैसे धारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान

कर। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी भक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण

भगत पीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काम विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नान करते काम तन पाव है। कई कोट पहवानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माह, कई कोट प्रदेश प्रमा है। जित जित लाभ हो ते तित लगना, नानक करते की जान है करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे उपाय, कई कोट पाथर बृख ने बजाय, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान विंदर सर छत्र, सगल समगरी अपने सूत तारे, नानक जे जे पावे तेह तेह निस्तारे। कई कोट राज सतामस साध, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र,

व्रत एक रंग सदा बस पार ब्रह्म के संग ज्यो जल में डलिया कटाना त्यो ज्योति संग ज्यो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कह सद गुरबान सलोक सुखी बसे बसकीनी आव निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतर राज महान सो नरक पाती होवत सुवान ज्यो जाने मैं ज्यो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आप सिखाओ कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन प्रमावे

फिरे अवतार। अनक जतन कार आत्म नहीं द्रवय हर दर गय कहो कैसे गवय। आस कहो जो भला कहावे तिसे भलाई निकट नावे। सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लाग जाने मुझते कछ होए।

बसे सगल व्याध मनते कह न से, जिसका साथ कृपा धारी, जिसका साथ कृपा धारी, साथ संग जम नाम रारी, थित पाई चूके भ्रम गमन सुन नानक, हर हर जा श्रवण, निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार।

की कथा मन भाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जापती हर हर नीत भली सो करनी सोभा धनवंत हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देह निवास सर्व सुख नानक प्रगास रोग सरगो निर्गो निंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका पेही फिर जा बस्तपदी

शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जन जाता तसकी रहत सत बचन साधु सब कद जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्राव जाने अंतर बसे बार पी हो नानक दर्शन देख सब मोही आप सद किया सब साध तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता कंकार अनकला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए

प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचा सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होहे ता इक ना चलै नाल किब सचियारा होई है किब कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है।

सब आपे सचियार, थापिया ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाहो, दुख पर हर सुख कर ले जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जेहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जेत सपावा विण भाणे के नाहे करी, जे तीसरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लाई। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आरजा होर दसुणी होए, नवा खंडा विच जाड़िया नाल चलै सब कोए, चंगा ना और खाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत तबल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोह न सका काल, नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख सालाहन मंद, सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत्संग तो गया।

पार गित उदार जल थल अमंड दिसुस अभंड जल थल महन दिसुस बेअंतन भवना तिर तर तुरास आ जान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर काहल कर कर प्रणाम चितर नाम छिजगात अजना बात अन झंझगात अनदरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अटीठ धर्म अतठीठ कर्म अन भरण अनंदाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकल है कलखंडल है महमंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्व उवारण है तीर्थ के तरण है जाके कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है मेरे मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है आजापा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकृत है अकृता कृत है तरणी तृत है मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलं कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर हरता रे परमात्म है सर्वात्म है तो बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो जंत्र जंत नमो जुजुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो बान बाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नृपांग भंके भंगी स्वरूपे अनंगी नापत्र भंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक श्री शांत अजाय अलाय अपय अभय अभू अजू अनास अगास अगांज अभंज अलख अपख अगाल दयाल अलेख अपेख अनाम अगाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरगे नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाश सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल करिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गरिमे हरियं करियं करिमल हिमे चतुर चक्रवर्ती चतर जगर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग वर्णा सीदयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग वर्णा सीदयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोगार जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रती बिन एक रति के माते मतंग जरे जन संग अनुभतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिपत न्याप सीसना जात बिचारे ते भय तो कह पय भूपतंत को ना के ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बात ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंस्त ही हया है राज हजारे भूत भिख भवान के भूपत गौन गए नहीं जात बिचारे श्री वत श्री भगवान भजिवन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान संयम नेम अनेक विशेखा वेद प्रान कतेब करान जमीन जवान सबान के पिखा है पावन आहार जति जतार सब सुपचार हजार देखा श्री भगवान भजन भुभत एक रतीबन एक ना देखा शुद्ध सिबा दुरंद दुबहा सुसा सुना दुरजान दुलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मुवासन माते मदंगन मान वलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे वीर पार बड्डे बरियार बिचारे सार की धार पछैया तोर देश मिलंद मवासन मातक जान के मान मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सुबातिन चकचार लवैया साहिब श्री सब को सर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जलमय थलमय पल ही पलमय सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के बपुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फरैजक सत्र सवै अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाथ जोन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम प्रसाद भरेंगे ब्रह्मेश्वर विष्ण सचिपत अंत फसेजम फास परायेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे
ਕਹਾ ਪਇਓ ਜਦੋਂ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਰੀਓ ਰੇ ਸਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਹ ਗਏ ਪਰ ਲੋਹ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕਿਉ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਜ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਵੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਬਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਿਖ ਰਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਿਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਾਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਹੂ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕਹੂ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਾਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮੰਦ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰਿਆ ਸਭ ਬੈਰਨ ਗੁਵਾ ਸੰਘਰਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੋਨ ਚੁਨ ਸਤਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹੱਦ ਮੁਝੇ ਉਭਰਿਆ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨੇ ਭਰਿਆ ਉਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰਸ਼ਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਏ ਵਿਆਰੇ ਦੀਰ ਬਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹੋ ਬਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਗੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਏ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਨ ਜਸ਼ਨ ਬਜਾਇਓ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुएं सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौने दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के साह सवासा संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद दे राख आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे ताम नियोटियां दी ओढ़ने आसरियां दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हो। आप जीआं दे हजूर अरदास बेनती आप जीआं ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जीआं दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप जी दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पांच बाणियां दे नेत्रिम आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन होए। उपरंत आप जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचारां छे पौड़ियां आनंद साहब दा जाप होया है। कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां। दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई। चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी। आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई है। आ दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमन करदिआं बतीत होवे। अरदास बेनती है जी भाई हरचरण सिंह उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते कृपा करनी। चढ़दियां कला बख्शनियां तंदरुस्तियां बख्शनियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। इस वेले बख्शियां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है। करी पाक साल सोज पवित्रा लाभ भोग हर राय। आप जी दा सीध प्रसाद ज्यो छके नाम वाहिगुरु जपे। श्री मुख वाग दी बख्श करो से ई प्यारे मेल जिन्हां मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मो कौ कीजै दास दास दासन को हर दया धार जगन्नाथा।

डुबत हर राका जैत सरी महला चौथा हम बारिक कशु न जानहे गात मित तेरे मूर्ख मुबद आना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुगद सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाऊ।

हर हर सतगुर पुरख मिला बह गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गा बह मीत हमारे हर हर नाम रकुर दारे। हर हर अमृत भजन सना बहो गुर मिले प्रगट हुई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मिलहो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता हर कै रंग मेरा मन राता।

हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावहु, मिल सतसंग ओ माहा राम। आओ सखी हर मिल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा।

मानतान जीत सबद लै लाहा गुरमत पंच दूत वस आवह मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाय सदा लै लाहा।

हाउ को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियाओ बरन न दिसे चेह न लखिए सुहागण साथ बुझियाओ सरवन वासी घट घट वासी लेप नहीं पहियाओ नान कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियाओ जैत सरी महला पंजवां।

आसरा। नाम रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपयो पियो गात थियो परमा को नानक जर जरा। जैत सरी महला पंजवां।

रहाउ। सफल दर्शन तुमरा प्रीतम चरण कमल आनूप अनक बार करो ते बंदन मने चरा बहु धूप।

नानक अपने कहु संसार भाव के कूप जैत सरी महला पंजवा। कोई जान हर सिंह देव जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकूर रहाओ। मान तान निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत किरपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो सरन दीन दुख भंजन चित वाओ तुमरी ओर अपै पाद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंदन शोर। जैत सरी महला पंजवा। चात्रक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ तारहु हर प्रेम भगत को नेह रहाउ।

नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करेह। चरण कमल नानक आराधे तिस बिन आन न केह। जैत सरी महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण। कर कृपा साधु संग भेटे पूरन पुरख सुजान। रहाउ प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी। तागी कीमत कह न जाई कुदरत कमन हमारी। लाए लाए लाड़ दास जाने अपने उदरे उदर नहारे। प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सरन द्वारे। जैत सरी महला पंजवा।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कह अंचल ला बहु बिघ मन दी जाय तरनी।

परी बिखे रस रचियो जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जान्यो नाहिन बन खोजन को तायो। रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो। जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जैत सरी महला नावा।

विसरत नाहिनि ते चिंता तन जारा किए पाव मुगत के कारण दह दिस को उठताया काठी पीतर बसे निरंजन ता को मर्म न पाया।

नानक सरन परयो जग बंधन राखो बिरद तुहारा। जैत सरी महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन जार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया। तिस दास प्यारे सिर तरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै।

देहो दर्स मन चाओ लह जाए वसूरी है होए पवित्र शरीर चरना तूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उचरंत नाम श्रवण सुनंत शब्द अमृत है नानक तेन सद बलिहार जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कुड़ावे कम एक ससाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान नवाब है प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहे से हथा चरण पुनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संता सांग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करन हरमन संजोग पूर्ण है गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है

तेरी पौड़ी। सावेला को कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूरत पला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याए कै मानिश पुजाई, वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई, सलोक पतत पुनीत गोबिंद है सर्व दोख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे, छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे कंदे आ पौड़ी।

सुन प्रताप गोविंद निरप पहे मान, तोट नयावे मूल संचया नाम तान, संत जना सिंह संग पाइये वड्डे पुन, आठ पहर हर त्याए हर जस नित सोन, सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिबत न माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जा पर पय दयाल ना व्यापै माया, कोट गा गए नास हर एक त्याए, निर्मल पय शरीर जन तूरी नाया, मन तान पय संतोख पूर्ण प्रभ पाया,

नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदारण है भौजल बिखम सगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरनी लगिया पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे हर कृपाल जा पए ता अवगन सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काड़ सिलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वरतंत एको नर हर नाम दान जा चंत नानक दयाल पुर कृपा करे एक सेवी एक संभला हर एक सपै अरदास नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एह सब किश आपे आप दूजा कहा के हो आप करो प्रभ दान आपे आप लेहो आवन जाना हुकम साब निचुलत दथे हो नान मंगे दान कर कृपा नाम देहो आवन जाना हुकम सब निचल तुद थे हो नान मंगे दान कर कृपा नाम देहो जैत सरी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाद कछु न जानो मन माया कह हाथ बिकानो रहाओ तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल जो के कामी इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो पल पल हर जी दे अंतर पारे हो जद देखो ता दोकी रासी अजो ना पतियाए निगम पै साखी गौतम नारो माव स्वामी शीश धरन सह पग गामी

चरै खजूर। कायें रे बक बाद लायो, जिन हर पायो तिन्हे छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखानै, मूरख नाम दियो राम है जानै। कौन को कलंक रहियो, राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ जाई। भनत नाम दियो सोकृत सुमत भये, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल आछै रहाओ, कुंभार के घर हांडी आछै, राजा के घर सांडी गो, ब्राह्मण के घर रांडी आछै, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के घर हींग आछै, पैसर माथै सींग गो, देवल मध्ये लींग आछै, लींग सींग हींग गो, तेली कै घर तेल आछै, जंगल मध्य बेल गो, माली के घर केल आछै, केल बेल तेल गो, संता मध्य गोबिंद आछै, गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम आछै, राम श्याम गोबिंद गो, राग बैराड़ी महला चौथा, घर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुन मन कथ कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावहि, भज गुरमत हर राम राम रहाउ, नाना ख्यान पुराण जस उत्तम, खाट दर्शन गावहि राम, शंकर करोर तेतीस ध्यायो, नहीं जान्यो हर मरमाम, सुर नार गण गंधर्व जस गावहि, सब गावत जीत उपाम, नानक कृपा करी हर जिन कौ, ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुर दान देवायो रहाओ, तिस जन को तन मन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो, खिन किंचित कृपा करी जगदीसर, तब हर हर हर जस त्यायो, जन नानक को हर भेटे स्वामी, दुख हमै रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै, हर आपे पंच तत्व विस्थारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगड़ चुकावै। बैराड़ी महला चौथा, जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवै, हर भव दिल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपौ निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कछ नदर ना आवै, हर लादा गुर विचारा,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

तेरी टेक सो सदा सद जीवै बलराम जियो। तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा, जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मन मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्श भेटे आ गुरपुरा, नान सद बलिहारी। सम्मलिया सच थान, मान महत सच पाया। बलराम जियो सतगुरु मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण, प्रीतम स्वामिया सब दिवस आए। गय कंठ लाए मिलाए अंतर जामिया। सत संतोख वजै बाजे अनद झुणकारे, सुन पै बिनास सगल नानक प्रभुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहरे, पेये एक हर बलराम जियो। ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई न साके, भिन्न कर बलराम जियो। विषम वेख्या विषम सुनिए, विषमाद नदरी आया। जल थल मयल पूरन स्वामी, घट घट रहा समाया। जिसते उजै तसमाय समाया, कीमत कहण न जाए। जिसके चलत न जाए लखण, नानक तिसै चाए। राग सोहि चंद महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंजन जागे। हर रंग जागे पाप भागे, मिले संत प्यारिया। गुरु चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया। सुन सरवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड भागे। बिनवंत नानक सरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे। अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा। गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस उपजय मन कणा। मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुख पणा। होए ऋण साधु प्रभ राधु, अपने प्रभावा। बिनवंत नानक दया तारो, सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जबत निस तरिया। हर चरण त्याए सफल पाए, मिटे आवन जाना। पाए भगत सुपाए, हर जप अपने प्रभ पावा। जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई। पतित पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा। गुर संत पाया प्रभु त्याया, सगल इच्छा पुनिया। हों ताप बिन सह सदा सर सह, प्रभ मिले श्री विछन्या। मन शांत आई वजी वधाई, मनो कदे ना विसराय। बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया, सदा भज जगदीश राय। राग सूही संत महला पंजवा, कर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं दे ही कण तेरी राम। तू सागरो रतनागरो, हम सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू मर जाना, कर मैं रमा साई। कृपा की जय सा मत दी जय, आठ पहर तुद त्याई। गर्व नगे जय रैन हो विजय, तांगत जिया रह

बड़े बड़े उच्चे हूँ इतन कलौरिया राम हूँ किछु नाही एको तू है आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा सर्व रंग रस माना चरण सरणि सा दास दासी मन मौलै तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया तुझो पर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम। सुरत मत चतुराई तेरी तू जना है जाना राम सोई जाने सोई पछाण जाको नजर सिरंद मानमक भोली बहुति राही फाति माया पंदे ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्हें सब रंग माणा नानक तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा हूँ वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम। हों बल जाई लख लख लख बरिया जिन भरम भरदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर स्यों मर माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला कौ नानक कौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला सो ही महला पंजवा। साजन पुरख सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता पाए

पूरे ता कि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याण सदा सदा प्रभु को भले हारे नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरु वट पागी पाइये जित मिलिये प्रभु जापै राम जन्म जन्म के कलव के उतरे हर संत तूड़ी नित ना पै राम हर तूड़ी नाइय प्रभु ते आइये बड़ जोन ना आइये गुरचरणी लागे परम पव भागे मन चिंदिया फल पाइये हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संता पै नानक सो प्रभु जिया का दाता पूरा जस परता पै हर हरे हर गुण दे हर संतन के बस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिने परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मेरे सदगुरु सुख पाए।

अविनाशीपायानां त्याय सकलमनोरथपाये शांत सहजानंद कनेरे गुरचरणी मनलाये पूर्वराया काट काट अविनाशी थान थनंतर साई।

सुन सुन ए मन निर्मल हो वाए कटिय काल की फासे राम कटिय जम फासे सिमर अविनाशी सगल मंगल सो ज्ञाना हर हर जप जपिया दिन राशि लागे सहित्याना कालमल दुख जारे प्रभु चितारे मन के दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी।

गुरुमुखे सरकरणे सारे बिनसे परम पै झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखात

मेरा मन सोहे अमित साधन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुरु चरण लागे सदा जागे मन वजियां वाधाई।

समाणा दुख न भूख न रोग व्यापै, दुख न भूख न रोग न व्यापै, सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन के चिंत मिटाए, संत जना

अपना व्रत रखिया परमेश्वर नानक नाम से आया नाव नेद सिद्ध रिद दिन करत तोट नया वैकाई राम खात खर्चत बेचत सुख पाया करते के दात सुवाई राम दात सुवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख न नेड़ आया शांत सहज आनंद कन्या।

रावण जाए फिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहुत साधो वध्या रोग

नाम तेरा प्रवान। नानक जिन्नी सुन के मन्या हां तिन्ना विटों कुर्बान पावड़ी। माया मोह सब कूड़ है कूड़ हो गया, हम मैं झगड़ा पायो न झगड़ा जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकायो न इको रब रहया, सब आत्म राम पछाणिया भाव जल तर गया। ज्योत समाणी ज्योत विच हर नाम समया, श्लोक महला पहला। सतगुर भीख्या देह मैं तू समरथ दा तार, हो मैं गर्भ निवारी काम क्रोध अहंकार। लभ लोभ पर जालिया ना मिले आधार, अहनस नवतर निर्मला मैला कबू न होए। नानक यह बिद छूटी है नदर तेरी सुख होए, महला पहला।

बेड़ा बंधन अब सके हो, बंधन की वेला, पर सरवर जब उछल है तब शरण सोहेला। हाथ न लाए कसुंबड़ै जल जासी ढोला, पर सरवर जब उछलै तब तरण दुहेला। हाथ न लाए कसुंबड़ै जल जासी ढोला, रहाओ एक आपी ने पतली सह केरे बोला, दुद्धा थनी ना आवई फिर होए न मेला। कह फरीद सहेली ओ सुहा लाए सी, हंस चल सी डुमना, ऐ तन फेरी थी सी।

हम जाजक तू लख प्यो रहाओ माया मोह तर कट्टी नार पुंडी कामण कामण यार राज रूप झूठा दिन चार ना मिले चानन अंधियार चक छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप दिसे बेजात न होए एक को नाही पौ कोय करता करे करा वैसोए शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचा धारिया अवर न सूजै गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मानमुख परम भुले बौराने हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जीरा रह न सकै किन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली सास ग्रास पो अपने भर पाली सद बै रागन हर नाम निहाली जब आपे जब जा आप जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम गोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए हो मैं मेट चल गुर शब्द समाए।

के सेवक शरण प्राप इन दिन को पौ नाहे बिलावल महल्ला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जाका कल हाथ और कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तव शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राख गोपाल रहाओ आसा परम विकार मोह इन महदो बाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म न जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखे त्यो रहा प्रभ पुरख प्रभ अगम पारे करण कारण समराथ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिया सार संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नरक की रीत मान खुटहर तेरा नहीं।

निर्लज्जे पांड हर संग सहाय महामीत दिस्यो तेरा भेद विद्या पंच बटवार उपजो महा खेद नानक तिन संतन शरणागति जिस मन वस कीना तन धन सरबस आपना प्रभ जन को दीना बिलावल महला पंजवा उदम करद आनंद भया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हार जप हो जीवा पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच तान सुतान बसंत तान जह जपिया नाम कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम मन दे कदे न विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कै सब किछ हाथ बिलावल महला पंजवार दिन तू बंद कर छोड़िया सुन सुख मैं पाया सदा सिमर चरण अरविंद शीतल होताया जीवतिया अथवा मुया किछ कामना आवै जिन्हें रचन रचाया को किते सिउ रंग लावै रहाओ रे प्राणी उसन सीत करता करै काम ते काढ़ै कीरी ते हस्ती करे टूटा ले गाड़ अंडर जेरज सेत अंडज जेरज सेत जो उत्पुजा प्राप की है कीर्त कीर्त कमावन सर्व फल रवि है हर निरत हम ते कछु नहाउना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंत ते नानक गुर खाड बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन धान अचल छेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश हो स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर कर कृपा जाको मिले धन धन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिन से तह परमा नानक तिस प्रभ भेटे आ जाके पूर्ण करमा बिलावल महला पंजवा जी जंत सुप्रसन्न पे देख प्रभ प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहरे आप खात खर्च निबहत रहै गुर अशब्द कूट पूर्ण पई समग्री कभू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निदे

तू मेरी ओट बाल बोध धन तुम ही तुम है मेरा परवार है। जो तुम करो सोई भल हमरै पेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्राप्त हो सगलो धारण मोहे मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बसारन। रहाओ पंच संच बिख्याले ग्राहज कीनी अमृत मन ते डारन। काम क्रोध लोभ रत नंदा सर संतोख बेदारन। मन इन ते काट लिहो मेरे स्वामी हार परे तुम सार। नानक की बेनंती प्रापै साध संग रंग तारन। बिलावल महला पंजवा। संतन कै सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्त आनंद मंगल धुन पूरही दिन सार रात। रहाओ कर कृपा प्रभ अपने प्रभ कीने नाम अपने की किन्नी दात। आठ पैर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्थान ते जात। तृप्ता गाय पेख प्रभ दर्शन अमृत हरस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिया अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो। दिन बिनस जगए सब सुख संताप रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना लाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसान आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते गुर क्या बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम कपै बिनसे गुहु नानक ठाकुर पुरता। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहिया गुर सिरजनहार सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। हाओ कर मस्तकदार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। नास दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौप दे दुप दे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सिव अंधकार तेह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म भय जो पेखियो कह न जाए अचर कह न जाए वड्याई मगन भय उहा संगर माते। ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊचा बीचना कीचा हौ तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पसारा एक अपर पारा एक बस्तीर्ण एक संपूर्ण एक के प्राण आधारा। निर्मल निर्मल उच्चो सूचा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत हे जा सियो राच माच तुम लागे ओह मोहनी मोहावत हे। रहाओ कनिक कामनी सेज सोहनी छोड़ खन मैं जावत हे। उर्ज रहे इंद्री रस प्रेरियो बिखैठ गौरी खावत हे। त्रिण को मंदिर साज सवार्यो पावक तले जरावत हे। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे। पंच दूत मूंड पर ठाडे केस गहे फेर आवत हे। दृष्ट न आवे अंध अज्ञानी सोए रहे मधमावत हे। जाल पसार जोग विस्थारी पंखी ज्यों फहावत हे। कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार मूली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पानत बोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे वे तन की चोली प्रेम मुख लागो। जो वट भागो सुहाग हमारो कत होना डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली। कहो नानक प्रेक रही सुहागन अत निकी मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दियारा तब ते दुरमत दूर पई। रहाओ पूर्ण पूर रहे संपूर्ण सीतर सांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तानते हुए सगल खई। सात संतोख दया धर्म सोच संतन देहो मंत लई। सात संतोख दया धर्म सोच संतन देहो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिनको सगली सोच पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्णन साके एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिए किछ कथन न जाई जह जह देखा तह रह समाई। रहाओ जह महाभयान दुख जाम सुनिए हम ते तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हार चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਮ ਰੂਪ ਅਭਿਨਾਸੀ ਕਰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਤੇ ਜਪਾਈਐ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੇਟੋ ਲੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਈਐ ਕਿਤ ਵਿਧੀਐ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਪਾਈਐ ਕਹੋ ਸੁਰਜਨ ਕਿਤ ਜੁਗਤੀ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ ਜੋ ਮਾਨੁਖ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਿਸ ਕੀ ਲਈ ਲਈ ਫੁਨ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੋਹੇ ਤੇ ਟੇਕ ਤੇਰੋ ਇੱਕ ਨਾਈਐ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤ ਸਰਨ ਸੰਤ ਠਹਿਲ ਕਰੀ ਧੰਦ ਬੰਧ ਅਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਅਰ ਘਨੋ ਆਨੰਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਹਰੀ ਐਸੋ ਹਰਸ ਵਰਤਨ ਸਾਕੋ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਉਲਟ ਪਈ ਧਰੀ ਪੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਊਂਦ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਖਪਰੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ

तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देव पाए वेसा ज्योति जाति गणत न आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर। चौथे उपाय चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खट तीन उपाय सो बूझे सिया बुझाए तीन समावे चौथे वासा वृणत नानक अमतां के दासा। पंचमी पंचभूत बेताला अभ्यगोचर पुरख निराला एक भरम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्तासे एक

करे लिव लाए हमें ममता शब्द जो लाए बुध वार आपे बुध सार गुरम करणी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हमें मालक होए दर सच सद शोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरु दुआर आपे देव देवनहार जो देवै तिस को बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो रतार देवन हरे को जयकार वीर वार वीर भरम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका जी जंत तेरी सरनाई सो मिले जिस लय मलाई शुक्रवार प्रव रहा समाई आप पाए सब कीमत पाई गुरमुख होवे सो करे विचार ससंयम करनी है कार वर्त नेम नता प्रत पूजा बिन बूझे सब पाओ है दूजा छनिछर वार सौन शास्त्र विचार हमें मेरा भरम है संसार मनमुख अंधा दूजे पाए जम दरबादा चोटा खाए गुर प्रसादी सदा सुख पाए गुरु सरणी साच लिव लाए सतगुर सेवे सेवड़ पागी ओमे मार साच लिव लागी तेरा नरंग राते सहज सुपाए तू सुखदाता लय मलाए एक सते दूजा नाही को है गुरमुख बूजे सोजी हो है पंद्रों तिथि तै सत वार मारुति आवे वार वार दिन सरैन तिवै संसार आवा गौण किया करतार निचल साच रहा काल तार नानक गुरमुख बूजे को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सिठ साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरे अभागे सतगुर पेटे सो जी पाए परपंच चूके सच समाए जांक मस्तक लिखिया लेख तांके मन वसिया प्रभ एक राम श्रेष्ठ पाए आपे सब वेखे कोई न मेटे तेरा लिखे सिद्ध साधक जे को कहे कहाए परमे पूला आवे जाए सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूजे किस दे सब दूजा हुआ एको वरते अवरना बिया दूजे ते जे एको जाने गुर कै शब्द हर दर निशाने सतगुर पेटे ताए को पाए विचों दूजा ठाकर आए जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनू मार ना साके कोए साहेब की सेव करै सुरनाई आपे बख्शे देवड्याई तेती उपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमति सांत वसे शरीर शब्द चीन फिर लगे ना पीर आवे ना जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सह समाए नानक गुरमुख वेखे हदूर मेरा प्रभ सबद रहा भरपूर एक सेवक एक भरम भुलाए एक आपे करे अरे आप कराए को वरते अवरना कोए

गावे अगाध बोध अकथ कथिए सहज प्रभ गुण गावे राम नाम रसाल रसिया रवे सच प्यारिया गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया श्री धर मोहरी पिर संग सूती राम गुर के भाए चलो साच संगुती राम धन साच संगुती अर संग सूती संग सखी सहेलिया एक भाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया दिन रहन घड़ी ना चसा विसरै सास सास निरंजनो शब्द जोत जगाए दीपक नानका पव भंजनो ज्योत सबाइड़े त्रै भवन सारे राम कड़कड़ लभ रया लाखे अपारे राम अलाखे अपार अपार साचा आप मार मिलाइए हमें ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए दर जाए दर्शन करी पाने तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख त्रिपति नानका उतारिया बुलावल महला पहला मैं मन चाओ घना साज विगसी राम मोही प्रेम पिर प्रभ अबनासी राम अवगत वर नाथ नाथे तिसे भावे सो थिए कृपाल सदा दयाल दाता जी आंदर तू जी है मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे भेख भवनी हठ न जाना नानका सच गए रहे पिंडी रहन भली दिन सो सुहाए राम निज कर सूतड़िए ब्रह्म जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणी आ तज कूड़ कपट सुपाओ दूजा चाकरी लोकाणी आ मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशाने आ कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद भाणे आ जाग सुन अड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मनी अड़ी अकथ कहाणी राम अकथ कहानी पद निर्बाणी को विरला गुरमुख बूझे ओ शब्द सुमाए आप गवाए त्रै भवन सोजी सूजै त्रै भवन सोजी सूजै रहे अति ते अपरंपर राता साच मन गुर सारे आओ पूर रहा सर्ब ठाई नानका उतारिया महल बुलाईडिए भगत स्नेही राम गुरमुख मन रैसी सी जिस देही राम मन मार रीजे शब्द सी जय त्रै लोक नाथ पछाने मन डीग डोल न जाए कत ही अपना पिर जाने मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं तान तकिया तेरो साज सूचा सदा नानक गुर शब्द झगड़ नवेरो संत बलावल महला चौथा मंगल एको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जे आया मन सुख सुमाना राम गुर तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माणा राम वडभागिया सुहागणी हर मस्तक माणा राम हर प्रभ हर सुहाग नानक मन भाणा राम निमाणया हर मन हर प्रभ हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापे राम मानस जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सोहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ जन नानक तेरा राम

श्री राम कै पुजाली निदास की निक्रोध जनाया मरण मोभे कारण अठे दोष निर्मल आया दृढ़धारी मन प्यारी मां दुर्मत नासी बनवंत नानक भाई निर्मल प्रमिल अबनासी सूरज किरण मिला जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आ राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी आत्म पसारा करणहारा प्रभ न नहीं जानी आप करता भुगताप कारण किया बनवंत नानक सही जाने जिनी अर रस पिया बुलावल महला पंजवां शंते को अंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वासे आओ सखी असी पिरका मंगल गावे तज मान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तज माण मोह बेकार दूजा सेवेक निरंजनो लग चरण सरन दे आल प्रीतमा सगल दुरत बेखंडनो होए दास दासी तज दासी बौड़ बिदीना धावा नानक प्यंपे करो कृपा ता मंगल गावा।

सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुख गामी अनद मंगल रसकना नवल नवतर नाहो बाला कमल रसना गुण पना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पे मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बलावल महला पंजवा संत मंगल एको अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखा निद पियो सुख सागर प्रभ भेटे नानक सुखी हो ते जियो संत सुख सागर प्रभ पाइए जब हुए भागो राम मानन मान वंजाई है अर चरणी लागो राम छोड़ सियान पचतराई दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ सरनाई राम राय थिर होए सुहागो राम सो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन फिर माइए राम पदत पावन प्रभ त्याग करे कहो कित ठहराइए राम नानक भगत भाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल न उच्च रहे बल गई दुह चरण रसना राम प्रभ भगत वचन सेवई कया काग रसना राम परम मोहि दुख न जानही कोटि कोट जूनी पसना राम अनक नानक बिन अवर नानक बिन हर अवर न चाहना पृष्ठा किरम पसमा राम बिष्टा किरम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे हुए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसाओ में बिख त्यागन राम ईति उतन डोली अर सेवा जागन राम नानक जिन प्रपाए अपना साट साट अल सुहागन राम बुलावल महला पंजवा हर खोजो वड भागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाइए पार ब्रह्म कह रंगे राम सो प्रभ सदी सेविये पाइये फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम वडभागी मेलावड़ा गुरमुख पिर चीना राम बहा पकड़ तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना।

सेवा ते अर पाईए जां को नदर करे मानस ते देवत भय सची भगत जिस दे औमे मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी सतगुर गुर सतगुर विच नावें की वड्डी वडियाई अर करते आ वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदे भाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन ओ ना पराया भला ना सुखाई क्या होवे किसे ही की झक मारी जा सचे स्यों बण आई जे गल करते भावे सा नित नित चढ़े सवाई सब झक झक मरे लुकाई श्लोक मारला तीजा त्रिग हे आसा दूजे भाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पलर ते आ गया नाम सार दुख पाए मनमुख ज्ञानी अंदले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्ज सिद्ध न हो बणी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे ते सतगुरु मिले सो हर हर नाम त्याए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन बल जाए महला तीजा आसा मन सा जग मोहनी जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विस विच है जेता सब अकार हुक्मी ही जम लगदा सो उबरे जिस बख्शे।

सोई वर्त्या जगत मै घट घट मुख भणिया। बहुत वडियाईया बहुत वडियाईया साहेब ने जाही गणिया। सच सहज आनंद सतगुरु पास है, सच सहज आनंद सतगुरु पास। सच्ची गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म। सच्चे स्यों बनिया सलोक महला तीजा। अपना अपना पिछाणी हर प्रभ जाता दूर। गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर। मनमुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर। नानक बख्श मलायन सच्चे शब्द हजूर। महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद। अणदन नाम सलाहना जपया मान्या आनंद। वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद। जन नानक नाम सलाया बहुण न मन तन भंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे। पिछले गुने सतगुर बख्श लय सतसंगत नार रलावे। ज्यों मी उठे गलियां नालियां टोबिया का जल जाए। पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे। ए वडियाई सतगुर निरवैर विच जित मिले तिसना भुखे उतरे हर सांत तड़ियावे। नानक अचरज देखो मेरे हर सचे साका। जे सतगुरु नू मन्ने सो सबना भावे। सोदा मलावल बाणी भगतां की कबीर जीओ की एको अंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो संसार पेख नार। न को पई रे पई है रे सुदे सुदे रेग चलो तुम नतर को धक्का दवई है रे रा। बारे बूढ़े तुरने पैया सबू जम लै जई है रे। मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे। तनवंतार निरतन मनई ता की कछु न कानी रे। राजा प्रजा साम कर मारे सो काल बडानी रे। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जावे न कबू मरते पर ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी मा एह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो मिले सारंग पानी रे। बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बहुरानो। मेरे बाबा मैं बहुरा सब खलक सियानी मैं बहुरा। मैं बिगड़ो बिगड़ सा मत औरारा। आप न बहुरा राम कियो बहुरा सतगुर जार गयो भरम मोरा। मैं बिगड़े अपनी पत खोई मेरे भरम भूलो मत कोई। सो बहुरा जो आप न पछाने आप पछाने ता एक जाने। अभय न माता सो कबो न माता कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए चुनकाई खाइए कंधा। जू विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो। पवजल निद भारी राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी रहा। बिखे बिखे की बासना तजी न जाई अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया किछ किया नानिका एहो जियरा। निर्मोल कौडी लाग मीका कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम सा...

तुलय देव। जयो जाय तहि सुख पावे माया ता सुना झोलै देव। कह कबीर मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एको अंकार। सतगुर प्रसाद सफल जन्म मुको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना।

जो तेरी शरणागता तिन नाही भार ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार कह रविदास कथ कथा बहु काय करी जय जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जय बलावल जय कुल साध बैसनो होए बरण या बन रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोयरा ब्राह्मण बैस सूदयर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पनीत कटंब सब लोए

छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोए जैसे पोरैन पात्र है जल समीप भानर वदा जन्मे जागे होए बाणी सदने की राग बलावल एको अंकार सतगुर प्रसाद निरपकन्या के कारण एक भया भेख तारी कामारथी सवारती वाकी पै सवारी तब गुण कहा जुगत गुरा जो कर्म नानासे सिंह शरण कत जाइए ज्यों चुंबक ग्रासे राम।

जन तोरा। एको अंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैरा काल मूर्त आजूनी सहभं गुर प्रसाद रा गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चेत आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किच जो जी अवरत प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जे मन मेरे जो सब मैं स्वामी रिया सुमाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गोसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय सो ने फल आस सब बिरथी जाई राव। जो दिसे माया मोह कुट

हर दर्शन देख हर दर्शन त्रिपताई। गुण महला चौथा। ऐसा हर सेविये नित त्याये जो खिन मैं किल विख सब करे बनासा। जे हर त्याग वर की आस कीजे तार नेपल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जे सेवै सब भुख लहासा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जय जाइए तय नाल मेरा स्वामी

सब ते उच्चा सब ते सुचा जां के हिरदे वसिया भगवान जन नानक तिस के चरण पखाले जो हर जन नीच जात सेवकान गुण महला चौथा हर अंत

रहे। हर गुण गायले मन समय छोड़िया वायले, अपने रहन को ठौर ना पावे, काहे काहे पर कह जाए लय राव। ज्यो मैगलिंद्री रस प्रेरियो, तू लाग प्रयो को टांबे लय, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिछड़ै, थिर संगत अर अर त्याए ले, जैसे मीन रसन साध, बिनस्यो मूठो मूड़ लुभाए ले, तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूटे पार पर शरण आए ले, हो कृपाल दीन दुख भंजन सब तुम रह, जी जनता ले, पावो दान सदा दर्श पेखा, मिल नानक दास दसाए ले, रा गोंड महला पंजवा, चौबदे कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज, माटी में जोत रखी ने वाज, बर्तन को सब कुछ भोजन पुगाए, सो प्रभु ताजी सो प्रभु ताज, मूड़े कत जाए, ब्रह्म पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सूजे निरंजन देव, राव जिन किए रंग अनक प्रकार, उपत परलो निमुख मझार, जा की गत मित कही न जाए, सो ब्राह्मण मेरे सदा त्याय, आए न जावे नेचल धनी, बेअंत गुणाता के केतक गनी, लाल नाम जाके भरे भंडार, सगल कटा देवे उधार, सत पुरख जाको है नाओ, मिटे कोट अग निमख जस गाओ।

निर्मल पय जन्म जन्म के खेल बिख गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम पै पारे उतारे सबते उच राम प्रगास निस्बासर जप नानक दास गुण महला पंजवा।

नारायण भूत संसार। नारायण कहत जम भाग पलायन, नारायण दंत भाने डायन, नारायण सद सद बगसांद, नारायण कीने सूखे आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत कुमाई बाप, नारायण

काट काट अंतर सद ही जागै। तीन गुणाय का सगति उपाया महा माया ता किया छाया छालिया छेद भेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकि गात मित कछु ना पाए नानक तां कै बल बल जाए। गुण महला पंजवा

सब तरण जन की निंदा करे ना कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जन एक ते आए जमुआ ताके निकट न जाए जन निरवैर निंदक अहंकारी जन भल माने निंदक विकारी गुर कै सेखा सतगुरु ते आया जाने उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए निधरिया सतगुर धर तेरी निधरिया सतगुर धर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलियारी जाके सिमरन पैज सुवारी रा गोंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कहिए मिलिया संता मस्त कर रहिए बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रब रही रहा संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चखमारी बोलत बोलत बड़े बिकारा बिन बोले क्या करे बिचारा कहो कबीर शूशा

जम का डंड मूड में लागे गौंडाए। आकाश गगन पाताल गगन है चाहो दिस गगन रहाय ले। आनंद मूल सदा प्रखोत मैं घट बिन से सगन ना जाय ले।

हृदय बसै भगवान, क्या परा संत है कि ना बांध पोट कुंचर कौ दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे, तीन बार पतिया भार लीना, मन कठोर जहू ना पतीना, कह कबीर हमरा गोबिंद चौथा।

ना अवतुता ना स्वभा माय ना काहू पूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ता कांत ना को पाई राव ना गृही ना उदासी ना राज ना भीखम गासी ना

भोग विलास। एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहा सुहागन गल सुहै हार संत को बेख बिकसै संसार कर सिंगार बहे पखियारी संत की ठिठकी फिरै बिचारी संत भागोए पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरै।

नहीं बोई है, सूद बिना कैसे मणि परोई है, ऊंडी बिना क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिम बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजै फेरी, खसम दुहागन तज अहेरी, कह कबीर कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं।

पतिए परचय साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सोदय, पांच पलीत को प्रबुदय। नाओ नायक की भगत पछाने, सो बजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करेंद्री कै, जतन ना मुचरै। कहु कबीरा मैसे लखन, धन गुरदेव अत रूप बिचखन गौंड।

सुहागन ना ओए रंड जग में भगते दूदा धारी गुवती खा बेवड़का सारी अने बिना ना होए सुकाल अने बिना ना होए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया धानिया नाद ठाकर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम दियो जी की घर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद असुमेध जगना है।

ज्यों मीना हरे पूसा पूसपू पसऊपा ज्यों मीना हरे पसुआरा सोना घटते हरे सुनारा ज्यों बिखी हरे पार नारी कौडा ढारत हरे जुआरी जय जय देखो तय तय रामार के चरना नित त्यावे नामा गुण।

प्रणवै ना प्रणवै नामा सो हरि जास जपत भय अपदा टरी गोंड भैरों भू भूता शीतला तावे खार बहानो शारे उडावे हौ तो एक रमैया लेहो आन देव बदलावन देहो राव शिव शिव करते जो नर त्यावे बरद चढ़े डौरू ढमकावे महामाई की पूजा करे नर से नर होए उतराए तू कहियत ही आद भावनी मुगत की बरिया कहां छपानी।

मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन हुए ओहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद अमरा पित माता जीवत मुकंदे मरत मुकंदे तांके सेवक को सदा आनंदे राव मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान सेव मुकंदे करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मिटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जोग तार उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीट दास कौरव दास अब तृष्णा चूकी जाप मुकंद सेवा ताहू की गोंड जियो अड़सठ तीर्थ नावे

नी हांडे निंदा कहां करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोदा साध बिचारिया, कर दास पापी नरक सुधारिया जोड़। राम कली महला पहला कर पहला चौबदे को अंकार, सतनाम करता पुरख नृपो निर्वैरा, काल मूर्त आजूनी सह भंग गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहस करता कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे सज लागे, तसे ध्याना भी कब ही किशु ना जाना, तेरा को नाम पछाना ना जाना। हरे मेरी कवन गते अम मूर्ख ज्ञान, सरन प्रभ तेरी कर कृपा, राखो मेरी लाज पतिरा।